0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: ಕ್ಯಾಚ್ ದ ರೈನ್, ಬಾರಿಶ್ ಕೆ ಪಾನಿ ಕಿ ಏಕ್ ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಕೋ ಹಮೇ ಬಚಾನಾ ಹೈ, ತೋ ಮೇರಾ ಖಾಸ್ ಆಗ್ರಹ ಹೈ, ವರ್ಷಾ ಕಾ ಬೂಂದ್ ಬೂಂದ್ ಪಾನಿ ಹಮ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಕೆ ಬಚಾಯೇ.
2: ಜಲ್ ಹೈ ತೋ ಹಮ್ ಹೈ, ಆಯೇ ಘರೋ ಆಫೀಸೋ ಮೇ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತಕ್ನೀಕ್ ಅಪ್ನಾಯ್, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ಔರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಬನ್ವಾಯ್, ಅನುಪಯೋಗೀ ಬೋರ್ವೆಲೋ ಕೋ ಠೀಕ್ ಕರೆ, ಜಲಾಶಯೋ ಸೇ ಗಾದ್ ನಿಕಾಲೆ, ಅಧಿಕ್ ಸೇ ಅಧಿಕ್ ಪೇಡ್ ಲಗಾಯ್. ಇಸ್ ಬಾರಿಶ್ ಆಯೇ ಜುಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ರೇನ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೇ.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना. देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा. वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए. दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत. अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए. ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद. मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया. इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं. इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की. भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है. इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्र

0: क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रत्नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त वुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।

0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड एक एक गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की

0: తెలుగు కార్యక్రమాలు వినాలని ఉందా? మన తెలుగు కార్యక్రమాలు కూడా న్యూస్ ఆన్ ఏఐఆర్ యాప్ లో లభ్యమవుతుంది.
1: నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మనసరంగా అవతరించి.
2: ആകാശവാണിയുടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ന്യൂസ് ഓൺ എയർ ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ആകാശവാണി എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം.
1: എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി.
3: ന്യൂസ് ഓൺ എയർ പ്രോഗ്രാം ബംഗ്ലാ ഭാഷയ ভালো ভালো സംഗീത് খবর আর অনেক রকম ভালো প্রোগ্রাম শোনা যাচ্ছে. আমিও শুনছি আর আপনারাও এর সাথে যোগদান করুন.

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 111 ಮೂಡಿಬರುವುದು.
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं. साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है. प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बार बीमा सेक्टर के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि किस तरह से दुर्घटना के समय जो बीमा राशि मिलती है वो हमारा बहुत बड़ा संबल बनती है और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग दुर्घटना के समय या फिर उससे पहले छोटी छोटी जो प्लानिंग्स करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा साथ देती है, हिम्मत देती है, जीवन में आगे बढ़ने का संबल उसी से हमें प्रदान होता है. तो प्रधानमंत्री जी ने जिस सेक्टर का जिक्र किया है, हम कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या हमारे मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं. पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा देती हूँ. इस विषय के बारे में हम ज्यादा जानेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे. हमारे साथ हैं श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य अधिकारी हैं पीएनबी बैंक से. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो.
2: धन्यवाद मैडम.
1: हमारे साथ हैं श्री कुलभूषण शर्मा जी, आप जीवन बीमा निगम से हैं, रीजनल मैनेजर हैं. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में.
3: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: हमारे साथ डिप्टी जनरल मैनेजर हैं SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, श्री ह्यूबर्ट. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में.
4: थैंक यू मैडम.
1: श्री अशोक कुमार हैं, आप AGM हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सहायक महाप्रबंधक. अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत.
5: थैंक यू मैम.
1: तो ऐसा करते हैं श्रोताओं, सबसे पहले हम मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा क्षेत्र का जिक्र किया है, दुर्घटना बीमा का उल्लेख किया है.
6: मेरे प्यारे देशवासियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है. यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गाँव में पेटकर परिवार रहता है. इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने. अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की. हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया. इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है. परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है. साथियों, सरकार करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं. इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं. इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिल चुकी है. साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का

0: उसके लिए 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख किया और साथ ही हमें प्रेरित किया कि इस क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी और बढ़े। तो इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आइए साथियों, पहले बात करते हैं दुर्घटना बीमा की। छोटा कदम बड़ा बदलाव कैसे बनता है, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। और मैं सबसे पहले अशोक चंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो नाम थोड़ा सा डराता है, ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद हमें कुछ राशि मिलेगी तो दुर्घटना ही क्यों हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में हम इन चीजों से बच भी नहीं सकते, जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता। और ऐसे में जहां हमें संगी साथियों की परिजनों की जरूरत पड़ती है, वहीं जरूरत पड़ती है कुछ धनराशि की भी जो हमें हौसला दे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आम नागरिकों के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका क्या महत्व है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने जिक्र किया, आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम में दो चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। और ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हैं, और किसी तरीके की अनहोनी अगर होती है आपके लाइफ में तो आपके परिवार को कैसे एक आर्थिक मदद मिले, उसके अंतर्गत ये दोनों कार्यक्रम, दोनों जो स्कीम्स हैं उसके भीतर आती हैं। और इसके माध्यम से आई थिंक बहुत बड़े सेक्शन को कंट्री के भीतर, पॉलिसीज के भीतर, जीवन बीमा के भीतर हम उनको कवर कर सकते हैं, और उनको एक किसी भी चैलेंजेस अगर आती हैं लाइफ में तो उसको हम उनके माध्यम से मदद कर सकते हैं
1: जी।
2: और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए, लाइफ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा लाइफ का एक पहलू होता है, जीवन सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं। और उसके अंतर्गत ये जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से 50 साल के लोगों को 436 रुपए में 2 लाख तक के इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, और वैसा ही है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंतर्गत 20 रुपए में आप किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना से आप अगर डिजेबल हो जाते हैं या आप असामयिक देहांत हो जाता है तो उसमें भी आपके जो परिवार वाले हैं जिसको आपने नॉमिनेशन किया है उनको भी 2 लाख का ये मदद मिलता है। इस कार्यक्रम को मैं इससे देखता हूं कि जब आप 12 साल पहले अगर जाएं, 2014 में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री के भीतर स्टार्ट किया गया, वित्तीय समावेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का विस्तार किया गया, जिसमें आज करीब 56 करोड़ लोग बैंक की प्रणाली से जुड़े हैं
1: जी,
2: और उसमें करीब 2,67,000 करोड़ की डिपॉजिट उन स्कीम्स में मौजूद है। तो उसको ही आगे कैसे ले जाया जाए, उन लोग जो बैंक के से जुड़े और बैंक में खाता उन्होंने खोला, तो बैंक का खाता खोलना तो एक इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट थी और उसमें हम लोगों ने उसमें मदद की लोगों को खाता खोलने में, लेकिन उसको और आगे लेकर कैसे जाएं, उसमें ये जो दो स्कीम्स हैं जो सुरक्षा आपको प्रोवाइड करती हैं उसको आगे ले जाने का प्रयास स्कीम्स के माध्यम से किया जा रहा है। और मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन दो स्कीम्स से जुड़े। आई थिंक इतनी कम राशि में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज
1: जी,
2: एक तो दुर्घटना के लिए और एक जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं वो
1: जी,
2: आई थिंक किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिल सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीम्स के साथ जुड़े और इन स्कीम्स का लाभ उठाएं
1: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, जब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, ऐसे में हमारे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो स्थापित काम कर रहा है, उनके लिए फिर भी ये बात सरल लगती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनका बहुत ही संगठित क्षेत्र में जो काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वित्तीय समावेशन में क्या हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू?
3: मेरे विचार में वित्तीय समावेशन में जब जीवन बीमा के हितलाभों को जोड़ा गया तो शायद प्रधानमंत्री महोदय अपने एक दीर्घकालिक एजेंडा के तहत ग्रामीण क्षेत्र को या उन क्षेत्रों को जोड़ना चाहते थे जिनको इंश्योरेंस कंपनीज टारगेट नहीं कर रही थी, उनका लक्ष्य नहीं ले रही थी, क्योंकि माना यह जाता था कि उनके भुगतान योग्य क्षमता कम है, इसलिए कम राशि में बीमा किया गया। मेरे विचार में शायद हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सस्ती ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शायद पूरे विश्व की सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी होगी।
1: जी,
3: जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मानव का अपने परिवार के लिए दो प्रकार का मूल्य है। पहला भावनात्मक, जो कोई किसी का माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है। दूसरा है उनका कोई ना कोई वित्तीय मूल्य है, जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आंकते हैं, मानव जीवन मूल्य के आधार पर। मैं जितना अपने परिवार के लिए कमा के देने वाला हूँ वो मेरा मानव जीवन मूल्य है, अगले 10 वर्ष में मैं कितना कमाने वाला हूँ ये मेरे मानव जीवन मूल्य का आंकलन हो सकता है। और मान लीजिए मेरी तो मेरे परिवार को एक वित्तीय क्षति होती है जिसके लिए बीमा समाधान उपलब्ध है। 2 लाख का बीमा समाधान सस्ता है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि क्या 2 लाख पर्याप्त है। इसलिए शायद 2 संदर्भ में इसको किया गया। 2 लाख का जो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ है
1: जी,
3: उसमें हमने किसी भी प्रकार की मृत्यु को कवर किया है, और दुर्घटनावश मृत्यु के लिए हमने 20 रुपए में 2 लाख का और कवर किया है। ये प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस है, और इसके बारे में हम जितनी जागरूकता फैलाएंगे उतना बढ़िया होता जाएगा। और आज के डेट में अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं नवंबर 2025 के अनुसार 25 करोड़ 79 लाख लोग इस बीमा योजना से जुड़ चुके हैं
1: जी।
3: अभी तक 10,02,628 मृत्यु दावों का भुगतान किया गया है, जो विश्वास बढ़ाता है इस प्रणाली में कि बीमित लोगों को जब भी इस तरह का कोई अकस्मात इमरजेंसी आएगा तो भुगतान किया जाएगा
1: जी। तो भरोसा बढ़ता है इससे। यहाँ अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बीमा बाजार में आप क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं? अब लोग इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं क्या? और जिस तरह से अर्निंग को लेकर बहुत कॉशियस रहते हैं, वैसे सेविंग्स के साथ साथ क्या इंश्योरेंस की तरफ भी उनका ध्यान बढ़ा है? क्या कहेंगे आप?
4: धन्यवाद नीलम जी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि PMJJY और PMSY भी इंश्योरेंस की एक स्कीम्स हैं जो कि अफोर्डेबल कीमत पर लोगों को उपलब्ध आती हैं
1: जी।
4: तो ये जो हमारा वित्तीय समावेशन है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है तो इसमें हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर देना पड़ेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने वित्तीय समावेशन का नियम फार्मूला लाए
1: जी।
4: इसको उपयोगी कैसे करें, वित्तीय समावेशन क्या है, कैसे इसको ले आ पाए, तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि उपयोगी और किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे बैंकिंग, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, खासकर कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूह के लिए उचित लागत पर
1: जी,
4: कम से कम उनको खर्च करना पड़े। भारत में वित्तीय समावेशन के तहत जो बीमा योजना उपलब्ध है उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इसमें उपलब्ध है। अब अगर इसको देखें कि अभी तक हमारे पास 31 मार्च 2026 तक हमारे देश में कितना PMJJY और कितना PMSY लोगों को उपलब्ध हुआ है
1: जी,
4: तो PMJJY 23,35,00,000 ये फिगर है जो अभी तक हमारे देश में 31 मार्च 2026 तक दी जा चुकी है
1: जी।
4: PMSY 53,97,00,000 इतने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है। टोटल इसको अगर इस तरह से देखें कि इसमें PMJJY और SBI पूरे जो समूह है उसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस सभी इसको उपलब्ध कराते हैं, तो सभी को टोटल मिला के ये संख्या उपलब्ध कराई है। इसमें हमारे SBI का अगर आप शेयर देखें
1: जी,
4: तो लगभग पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हमारा 35% का शेयर है और 30% का शेयर PMSY में है। इसको अगर समझे कि PMJJY क्यों जरूरी है, तो PMJJY इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है लोगों के लिए, कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए या कम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। और अगर उनका कोई व्यक्ति जो मेन कमाने वाला घर का मुखिया होता है उसकी किसी कारण से दुर्घटना होने पर या दुर्घटना होने पर उसका किसी तरह की क्षति होती है, मान लीजिए उसका आधा पैर हाथ या इस तरह की

0: घटना में उसको जो काम करने की है उसकी क्षति होती है तो उसको कोई बीमा किसी तरह का नहीं मिलता है। इसी तरह अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। और हमारे देश में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुरक्षा बीमा उपलब्ध नहीं है
1: जी।
0: तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो की थी, ये पूरी तरह लाइफ इंश्योरेंस है और इसमें सिर्फ 436 रुपए एनुअल प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इसको भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। उसके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका बैंक में खाता होना चाहिए
1: जी,
0: ये उसकी कंडीशन है। और 436 रुपए में लेने के बाद एक साल के लिए उसको 2,00,000 रुपए का बीमा पूरे एक साल के लिए मुफ्त है कि अगर उसके साथ कुछ भी घटित होता है
1: जी
0: तो उसका 2,00,000 रुपए उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाए
1: जी। इस बारे में मैं आपसे और भी जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी पसंद का एक गाना सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को। अशोक जी, आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
0: मैं ना भूलूंगा
1: जी,
0: जो शोर फिल्म का गाना है उसको आप सुनवाइए
1: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई दो योजनाओं की, जो कि बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, और साथ ही बीमा क्षेत्र के बारे में हम अपनी जानकारी भी बढ़ा रहे हैं हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं पीएनबी बैंक से प्रबंध निदेशक श्री अशोक चंद्र जी, हमारे साथ हैं जीवन बीमा निगम क्षेत्र के रीजनल मैनेजर श्री कुलभूषण शर्मा जी, इस समय स्टूडियो में श्री ह्यूबर्ट हैं जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और श्री अशोक कुमार हैं एजीएम एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक। और हम बात कर रहे थे कि ये योजनाएं क्यों शुरू की गई और इनका लाभ किस तरह से मिल रहा है आमजन को। तो मैं अशोक जी अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो निम्न आय वर्ग है उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं जो कि इसी तरह का असंगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं या श्रमिक हैं मजदूर हैं, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
1: या बिल्कुल, इस स्कीम में केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए
0: जी,
1: और एज जो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर 18 साल से 50 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और अगर आपने ये लिया हुआ है तो 55 साल तक आप इसको अवेल कर सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा, इसमें और कोई किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, और जैसे कि हमारे शर्मा जी ने भी बताया आपको कि बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, और इतने कम रुपए में आप कोई ऐसी स्कीम के अंतर्गत आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं
0: जी।
1: मैं देख रहा था कि 436 रुपए जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर है और 20 रुपए जीवन सुरक्षा बीमा योजना के भीतर है, और अगर आप चाहें तो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं, तो टोटल आपकी जो खर्च होती है वो 456 रुपए खर्च होता है
0: जी।
1: आप 365 दिन से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 1 रुपए 24 पैसे, 1.25 रुपए में आपको ये स्कीम 2 लाख का कवरेज आपको मिल रहा है
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि जितने लोग हैं और जिस आयु वर्ग में 18 से 50 साल के इस ग्रुप में है, आई थिंक उनको तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना तो लेना ही चाहिए, और ये गांव में तो है ही, शहर में भी है, इनफैक्ट सारे सर्विस सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने खुद लिया हुआ है
0: जी।
1: मैंने अपना खुद इंश्योरेंस कवरेज दोनों स्कीम में लिया हुआ है, तो इसका लाभ तो हमारे देश के सारे नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें और एक सुरक्षा कवच के रूप में एक अपने नॉमिनीज को प्रोवाइड करें
0: जी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कम हमें इसके लिए भुगतान करना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटा कदम बड़ा बदलाव, कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट एक देना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण जी, जैसा अभी सर ने बताया अशोक चंद्र जी ने, कि हम लोग जो सर्विस सेक्टर में हम भी ले सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आप डिटेल में इस बारे में बताएं कि एक परिवार में क्या ऐसा कोई नियम है कि एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो परिवार का मुखिया है वही ये बीमा ले सकता है, और इसके लिए क्या कोई आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, क्या प्रक्रिया है?
2: जहाँ तक प्रधानमंत्री योजनाओं का संदर्भ है, दोनों ही योजनाओं में किसी प्रकार का आय का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता
0: जी।
2: किसी भी प्रकार का सदस्यों के रूप में संख्या का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास खाता है, जो खाता धारक है, वो उसे ले सकता है
0: जी।
2: केवल एक शर्त है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार ये लाभ नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए

0: ग्राहक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी उनका खाता है और पीएनबी में भी खाता है, तो दोनों जगह से दो दो लाख का वो बीमा नहीं ले सकता
1: जी।
0: इसके अलावा और कोई भी इस पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 अगर वो खाता धारक हैं
1: जी
0: तो बीमा ले सकते हैं। और प्रीमियम देने की दशा में प्रीमियम की कटौती होना पर्याप्त है मृत्यु की दशा में बीमा राशि देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, नामांकित व्यक्ति का केवाईसी मांगा जाता है जिसमें उनका आधार कार्ड वैध है और उनके खाते का होना, और खाते को नेफ्ट किया जाएगा, सीधा ग्राहक के खाते में पहुंचता है पैसा, उसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। केवल इतनी ही शर्तें इस पे लागू हैं
1: जी। अगर उन्होंने पहले से प्राइवेट सेक्टर में कोई बीमा लिया है तो क्या वो एक अवरोधक है या उसके साथ ही बीमा लिया जा सकता है?
0: चाहे उन्होंने निजी क्षेत्र में लिया हो या सरकारी क्षेत्र में लिया हो
1: जी,
0: अगर पीएमजेजेवाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बीमा लिया गया है तो उसकी इस पे कोई भी बाध्यता नहीं है। ये 2 लाख की बीमा राशि पीएमजेजेवाई में और 2 लाख की बीमा राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उपलब्ध है
1: जी। इस बारे में मैं आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन पहले एक सवाल कि आप कौन सा गाना सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं?
0: आज का जैसा वातावरण है
1: जी,
0: किशोर कुमार जी का एक गाना है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, वो मुझे मेरा वैसे भी फेवरेट गाना है, बहुत मुझे अच्छा लगता है,
1: तो हम आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे विशेषज्ञ आज हमें बता रहे हैं दुर्घटना बीमा के बारे में विस्तार से और क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उचित माध्यम से इसका लाभ लिया जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले दिनों आपने क्या ऐसा बड़ा बदलाव देखा है? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो जागरूक हैं बीमा के बारे में?
1: बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नीलम जी आपने। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है
0: जी।
1: तो जब कोरोना में बहुत सारे हमारे देशवासियों के मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का अपना कार्ड छूटा, तो इन परिस्थितियों में ये जिसने जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले से नामांकन किया था हमारे देशवासियों ने, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिली। तो इसमें नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में जितना अधिक से अधिक लोगों ने नामांकन किया है उसी हिसाब से उसी रेशियो में कंपनियों ने उनको भुगतान किया। जो रेशियो है वो काफी अच्छा है
0: जी।
1: कि इसमें क्लेम तुरंत हो जाता है और बहुत समय नहीं लगता, लगभग एक माह के अंदर क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। पहले मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन एनरोलमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितनी उम्र तक ये वैलिड है
0: जी।
1: तो इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना ये पूरी तरह से बीमा योजना है। इसमें किसी भी कार्ड से मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपए का कवर प्रदान करती है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता कि मृत्यु कैसे हुई। इसका प्रीमियम मात्र 436 रुपए है, साल भर के लिए है। अगर किसी ने बीच में प्रीमियम लिया है तो उसको प्रोरेटा पे वो कम हो जाता है
0: जी।
1: और 1 जून से 31 मई हर साल उसके लिए वैलिड होती है। इसका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट माध्यम से मई के 31 मई के आसपास आपके खाते से डेबिट होता है। तो सभी भाइयों ने जिन्होंने अभी तक स्कीम ली है उनसे अनुरोध है कि वो कृपया ये सुनिश्चित करें कि जब भी रिन्यूअल आए तो अपने खाते में सफिशियंट बैलेंस रखें, क्योंकि अगर एक बार रिन्यूअल में पैसा नहीं कटा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो फिर से आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो पहला तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, इसमें जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है वो इसमें एनरोल कर सकता है। ये स्कीम 55 साल तक लागू रहती है। अगर आपने 18 से 50 साल के बीच में एनरोलमेंट कर लिया है तो स्कीम का लाभ आप 55 साल की उम्र तक सभी प्रकार के खाते कवर होते हैं। बैंक में आपका ओडी है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सेविंग बैंक है, चालू खाता है, सभी खाते इसमें कवर है। आपका बैंक में खाता होना चाहिए। जो इसकी पॉलिसी है उसमें एक 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है कि अगर उस पीरियड में कुछ बात होती है तो उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए इसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए
0: जी।
1: दुर्घटना की स्थिति में ये तुरंत लागू हो जाता है, जैसे ही आपने किया है ये उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरक्षा बीमा योजना की। तो सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरह से पूरी तरह दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में 2,00,000 रुपए का कवर प्रदान करती है
0: जी।
1: इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, साल भर का प्रीमियम मात्र 20 रुपए है। और इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसका खाता बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए
0: जी।
1: ये आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के जो भी खाता धारक हैं और किसी भी तरह का उनका बैंक में खाता है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है या चालू खाता है, बचत खाता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं
0: जी।
1: ये पॉलिसी भी 1 जून से 31 मई तक के लिए वैलिड होती है और मई महीने में इसका फिर से रिन्यूअल प्रीमियम आपके खाते से डेबिट होता है
0: जी।
1: तो उसको आप सफिशियंट अपना मई महीने में बचत रखें जिससे कि आपके खाते से उसका प्रीमियम डेबिट हो सके
0: जी।
1: इसमें 2,00,000 का कवर है जो एक्सीडेंटल केस में है और इसका क्लेमेंट बड़ा ही सिंपल है। इसको आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और उसके कारण के साथ कि किस कारण से मृत्यु हुई है आप उस बैंक में दे दें, तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं और वहां से क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की है वो हम कहना चाहेंगे कि जब भी इस कंपनी में, इस इंश्योरेंस स्कीम में जब भी कोई व्यक्ति नॉमिनी करे तो ध्यान रखे कि अपनी नॉमिनी का नाम ध्यान से उसमें भरे
0: जी।
1: क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब नॉमिनी का नाम होता है तो पहले कई बार गलत भर दिया जाता है जिसको सुधारने में फिर काफी समय लगता है। सो इसका ध्यान रखना है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो जो भी आपकी नॉमिनी है उसका नाम ठीक से भरा जाए।
0: जी, ये आपने पूरी प्रक्रिया हमें समझाई और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो अब विचार कर रहे होंगे ये बीमा लेने के लिए, उन्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और जो हमारे हेल्प करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घर में जो काम के लिए आते हैं, चाहे हमारे ड्राइवर भैया हैं, मालिक काका हैं, तो हम ऐसे

0: लोगों को भी बताएं इसके बारे में, क्योंकि उनके लिए बेहद उपयोगी ये होगा और जो जानकारी है उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही सरल तरीके से ये बीमा लिया जा सकता है। अशोक चंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, सर अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी जब हम लेते हैं तब उसमें शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े अच्छे से समझा दिया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस पैसे की, तो एक तो अगर वो दुर्घटना बीमा है या मृत्यु बीमा भी है, तो होता यह है कि एक तो परिवार वैसे ही दुखी है, परेशान है, मनोबल उनका बहुत कम है और उसमें हिडन क्लॉजेस भी सामने आते हैं, निजी क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस तरह का कोई लूप होल, क्या कमी इस पॉलिसी में भी है, इन योजनाओं से जुड़ी है?
1: नहीं, इनफैक्ट इस स्कीम की यही ब्यूटी है
0: जी,
1: कि जितना ये सरल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, उतना ही सरल है इसके कोई भी क्लेम अगर आते हैं तो उसके निपटारा के लिए भी
0: जी।
1: और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी दोनों स्कीम के अंतर्गत जो इंश्योरेंस ली जाती है, चूंकि ये बैंक के माध्यम से होता है, जैसा कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने बताया आपको कि खाता होना आपका जरूरी है, बैंक में खाता होना चाहिए और बैंक के खाते में ही इसका प्रीमियम जो है वो डेबिट होता है, और बैंक एक मीडियम है जो ये फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस की प्रोवाइड करता है। तो इसमें किसी भी तरीके के जो क्लेम होते हैं तो हमारे बैंक के जो साथी हैं वो उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके और रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में उसको दाखिल करते हैं और बैंक पूरा सहयोग करता है इसमें, इसको निपटारा करने के लिए। और जैसा कि अभी चर्चा में आया कि क्लेम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसमें प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में, और करीब 97% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में। तो इसमें किसी भी तरीके की शंका और कठिनाई आप नहीं समझे कि इंश्योरेंस तो मिल गया लेकिन आगे क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, बहुत ही सरल है और ये प्रायोरिटी में आता है हमारा, चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये पार्ट है, तो बैंकों का भी दायित्व तो बनता है इसमें और इंश्योरेंस कंपनीज का भी दायित्व तो बनता है
0: जी,
1: कि इसको कैसे जल्दी से इस तरीके के कोई सेटलमेंट क्लेम आए हैं तो उसको निपटारा किया जाए
0: जी। और यहाँ इसी मोड पर आपकी पसंद का एक गाना,
1: मेरी तरफ से अगर आप कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है
0: जी,
1: अगर इस गाने को आप सुनाए तो मुझे बहुत खुशी होगी
0: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है हमारे श्रोताओं के लिए, तो लीजिए सुनिए ये गाना।
2: कभी

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि बीमा जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, और विशेष तौर से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा को हम समझ रहे हैं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। हमारे विशेषज्ञ बहुत ही सरल भाषा में और बैंकिंग प्रणाली किस तरह से सहयोग करती है वो हमें बता रहे हैं। दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, किस तरह से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है हमारी छोटी छोटी बचत से, हमारे छोटे छोटे प्रयासों से। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, आम तौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बेहद सरल लगता है कोई भी भुगतान करना, या अब पेमेंट हमें जब आती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक साइबर फ्रॉड जो है, साइबर क्राइम्स जो है, उसका जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब ये बीमा योजना जो है पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर है, तो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित ये पूरा कार्य है, और छोटी छोटी बचत जो लोग अपनी जोड़कर देंगे और मुसीबत के लिए उस समय के लिए वो अपना धन संचय करते हैं कि जरूरत के समय हमें काम आए, क्या इसमें इस तरह का कोई डर जुड़ा है साइबर फ्रॉड का?
1: बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में फ्रॉड होने की संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता
0: जी।
1: PMJJY या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं उनके ढांचे में ये पूर्ण व्यवस्था की गई है कि ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके और फ्रॉड ना हो। दोनों के सहयोग से अगर ग्राहक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है
0: जी,
1: तो फ्रॉड की संभावना नगण्य अथवा शून्य हो जाती है। मेरे विचार में इस क्षेत्र में अगर हम दोनों योजनाओं की बात करें, हमारा जो ग्राहक है
0: जी,
1: वो बहुत अधिक इंटरनेट अथवा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और भुगतान की विधि हमने नेफ्ट के द्वारा रखी है
0: जी,
1: तो हमारी साझी जिम्मेवारी बनती है बीमाकर्ता की और बैंक की कि नेफ्ट का जो सही आंकड़े हैं उनकी प्रविष्टि की जाए, उनको भली प्रकार जांच लिया जाए, और क्योंकि ये पैसा सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में जाने वाला है, फ्रॉड को रोका जा सकता है। मेरे विचार में यहाँ उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को हम दोनों कंपनीज पे भरोसा करना चाहिए, जिस बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा लिया है या जिस बैंक से उन्होंने अपना खाता रखा है
0: जी।
1: दोनों ही सुदृढ़ हैं इस मामले में, जागरूक हैं, ग्राहक उन्मुखी हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो
0: जी। और क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है कि वो बहुत ही लालच कुछ दे कि हम बहुत कम समय में आपको ये प्रोविडेंट देंगे, ये लाभ देंगे, तो वो जोखिम भी कम हो जाता है, इसमें भरोसा बनाए रखा जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई बार इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं कि किसी को सांप ने काट लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, या बिजली गिरी है कहीं पर, या किसी घर का निर्माण हो रहा था, छत ढह गई है, बारिश या भूकंप में इस तरह की दुर्घटना हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान जबकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं और घर का माहौल भी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो कैसे मदद होती है इन योजनाओं के माध्यम से?
2: धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि जब इस तरह की दुर्घटना उनके साथ हो जाए तो वो किस तरह इसके साथ डील करें। तो पहला तो ये कि दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है, किसी भी कारण से होती है, तो जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर मिलता है। तो उसके लिए सिर्फ हमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति है जिसका बीमा किया गया है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो वो बनवाने के लिए तुरंत उसका प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो सवाल आपका था कि जो सुरक्षा बीमा योजना है, चूंकि एक्सीडेंटल स्कीम है, इसमें 2,00,000 का बीमा कवर है, उसमें एक्सीडेंट से, तो जैसे सर्पदंश से अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये डॉक्टर कन्फर्म करेगा कि हाँ इस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, हमारे जो खाता धारक है उसकी, वो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगा। तो ये जो 2 रिपोर्ट होंगी इसको जैसे ही बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए उसको पोर्टल पर डाल देगी
0: जी।
2: ऐसे ही जो आपने बोला कि आकाशीय बिजली गिरने से अगर होती है, तो वो भी इसमें

0: कवर है, दुर्घटना बीमा योजना में दोनों कवर है
1: जी।
0: तो इसमें हो जाएगा। अगर मकान गिरने से हुआ है तो वो भी इसमें कवर है। तो कोई भी दुर्घटना होती है और उसके कारण अगर मृत्यु होती है तो इसमें दोनों तरह का बीमा मिलेगा
1: जी।
0: सुरक्षा बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा और जीवन बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा। तो अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के दसने से, बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से या उसका मकान ढहने से हुई है तो उस केस में उस व्यक्ति को 2+2 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक से और उससे पास हो जाए
1: जी। और कितनी समय सीमा के भीतर ये मिलता है या कितने दिन का समय उसे दिया जाता है ताकि परिजन स्वयं को संभाल सकें, क्योंकि कुछ समय उन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है, तुरंत वो क्लेम के लिए नहीं आ सकते, तो कितना समय उनके पास होता है?
0: सो इसमें देखिए 1 महीने का समय मिलता है कि हम कम से कम 1 माह में उसको जितनी जल्दी सहायता करें उतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 1 माह या 2 माह या 3 माह में नहीं कर पाए तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा
1: जी।
0: जब उसको पता चले उसके डोमिनी को कि हमारा इंश्योरेंस था, पति का उसके खाते से पैसे कटे हैं, तो जैसे ही उसको पता चले वो इन कागजों के साथ बैंक में संपर्क करें। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि हमारा काफी नेटवर्क है। आप जानते हैं कि बैंक में न सिर्फ ब्रांचे हैं, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र भी हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है, हम उन लोगों को, चूंकि ग्राहक सेवा केंद्र गांव में रहता है और एक गांव के लगभग काफी लोगों को वो परिचित होता है
1: जी।
0: तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का प्रतिनिधि है उसको पता चल जाता है, तो वो उसको मदद करता है कि इन्होंने जीवन बीमा लिया था, इन्होंने सुरक्षा बीमा योजना लिया था, तो वो उसके कागज बनवाने में भी मदद करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कराने में बैंक को भी मदद करते
1: जी। यानी सुओ मोटो एक्शंस भी हैं, मदद की जाती
0: यस,
1: है
0: यस
1: जी। यहाँ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बीमा लेते वक्त अपना नॉमिनी नहीं किसी ने रजिस्टर किया है, उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होता है?
0: ये जो हमारी सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें प्री कंडीशन है नॉमिनी का नाम देना। जब भी हम बीमा एनरोल करते हैं उसी समय नॉमिनी का नाम उसमें डालना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसमें नॉमिनी नहीं मिले। बस गलती कई बार ये हो जाती है कि चूंकि फॉर्म अक्सर अंग्रेजी में भरे जाते हैं तो स्पेलिंग में कई बार लोगों से गलतियां हो जाती है, या लोग कुछ बुलाते हैं घर पे कुछ और, कई बार उस नाम को भर देते हैं, बट नॉमिनी उसमें डालना कंपलसरी है, उसके बिना बीमा आज की तारीख में नहीं मिलता है। तो इस तरह की कोई शिकायत इसमें नहीं है
1: जी। आपसे जानना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हैं, विशेष तौर से महिलाओं के लिए हैं, छोटे छोटे समूह में महिलाएं ग्रुप इंश्योरेंस भी ले रही हैं। ऐसे में जो महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और कभी कभी वो अपने घर पर भी नहीं बताना चाहती हैं अपनी बचत के बारे में, कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो क्या इसमें किसी विटनेस की भी जरूरत होती है जब वो बीमा लेती हैं? किसी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं साथ में, या ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ इसमें हो सकता है?
2: नहीं, इसमें कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड फॉर्म होता है और उसमें खुद वो अपना डिटेल्स भरे जाते हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जैसा कि अभी बताया गया आप
1: जी।
2: और सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो बहुत ही अच्छा है, जितनी महिलाएं उसके भीतर ग्रुप के भीतर काम कर रही हैं, आई थिंक सारी महिलाएं इस दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकती हैं
1: जी।
2: और आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हम देखते हैं इसको
1: जी।
2: और उसमें अगर इसको सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर ये लाभ भी उनको प्रोवाइड की जाए बैंकों के माध्यम से या अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से उनको इसमें भी जोड़ दिया जाए, एक बहुत बड़ी क्रांति देश के भीतर हो सकती है। देखिए आज जो भारत के भीतर स्थिति है, आई थिंक 4-5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है, और जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं और उसके भीतर हम काफी काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी गांव-गांव तक होना चाहिए। और उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके माध्यम से हम जो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनको अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है
1: जी।
2: ये दो स्कीम्स का तो लाभ उनको मिलता ही है, लेकिन इसके माध्यम से उनको ये भी जानकारी मिलती है कि हमें आगे और भी किसी तरीके के इंश्योरेंस कुछ लेने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो एक बहुत बड़ा रोल विकास के दर में काम करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये।
1: और कंपनियां जो है, जो कि कुछ इम्प्लॉयज के साथ में काम कर रही है, वो हायर करते हैं टैलेंट को, क्या कंपनी अपनी तरफ से उनका इंश्योरेंस करवा सकती है या ये इंडिविजुअल लेवल पर?
2: नहीं, ये होता तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, उनके बैंक के खाते से ही होता है
1: जी।
2: और अभी तो जीवन सुरक्षा पोर्टल डेवलप हो गई है जिससे किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मिस सेलिंग नहीं हो, कस्टमर के कंसेंट लेने के बाद ही इसको दोनों पॉलिसीज को लोगों को मुहैया कराई जाए। और उसके लिए अभी

0: जीवन सुरक्षा पोर्टल में आप लोग अप्लाई करते हैं और उसमें बैंक के जो साथी हैं उसमें मदद करते हैं और उसके बाद उन पॉलिसी ली जाती है। लेकिन जरूर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को मदद करना चाहता है तो वो जो प्रीमियम पे कर रहा है उतनी प्रीमियम राशि वो रीइंबर्स कर सकता है उनको। और आई थिंक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी कर रहे हैं, उनको ये इसका लाभ प्रोवाइड करने के लिए पूरी जो प्रीमियम है वो रीइंबर्स कर देते हैं, उनके खाते में वो क्रेडिट कर देते हैं, ये किया जा सकता है इसमें।
1: जी ये किया जा सकता है जी। कुलभूषण शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी, जीवन बीमा निगम के बारे में तो भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये जो ध्येय वाक्य है ये लोगों को रटा हुआ है। ऐसे में जब हमारे बैंक्स भी अब बीमा प्रणाली से जुड़ रहे हैं तो कई बार भारत में क्योंकि इतना विशाल देश है और भौगोलिक विशेषताएं हमारी हैं लेकिन विविधताएं भी हैं उसमें, कई जगह स्थानीय बैंक भी होते हैं जो कि सरकारी बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं और वो एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं। क्या वो इस तरह का बीमा जो है वो करवा सकते हैं या ये योजना वो उपलब्ध करवा सकते हैं, एंटाइटल हैं वो?
2: नीलम जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आमतौर पर धारणा ये है कि निजी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं
1: जी
2: शायद अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित हैं, वो नियामक है, उनके द्वारा ही उनको लाइसेंसिंग किया जाता है। तो यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि छोटे बैंक या निजी बैंक उस परिधि में नहीं आते हैं। मैं उत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सेंट्रलाइज हब है उसका प्रभारी हूँ
1: जी।
2: मेरे पास इस समय लगभग 130 छोटे बड़े बैंक्स हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हमारे साथ MOU साइन करके कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है और अखिल भारतीय स्तर पे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ये हमारे उत्तर क्षेत्र LIC से जुड़े हुए हैं जिनका पूरे भारत का कार्य करने का तरीका हम देख रहे हैं
1: जी।
2: कहीं भी हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है कि किसी निजी बैंक ने या किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य किया हो। तो लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए, हमारी जो भी राजकीय व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बहुत सक्षम है और जितने भी नियामक हैं वो अपना कार्य भली प्रकार कर रहे हैं। और ये तो योजना ही सरकार की है और इसमें वित्तीय सेवाएं विभाग हमारे मॉनिटर के रूप में काम करता है, समय समय पर इसकी समीक्षाएं की जाती हैं, जो भी आंकड़े हैं उस पे अनुसंधान किया जाता है
1: जी।
2: अगर कुछ ऐसा होता तो आज तक पकड़ में आया होता, तो मुझे लगता है कि हम भरोसा दिला सकते हैं देश की जनता को कि ये जो भी प्रणाली है एकदम बढ़िया कार्य कर रही है और वो चिंता मुक्त होके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, सबको जो लाइसेंस दिया गया है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है और उस प्रक्रिया के अंतर उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। यहाँ मैं एक नामांकन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा
1: जी।
2: नामांकन क्योंकि आवश्यक है तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इसका बीमा धारक है वो अपना नामांकन परिवर्तन करा ले
1: जी।
2: क्योंकि अगर नामांकन नहीं है वैध रूप से तो मृत्यु की दशा में पैसा किसको दे, ये बैंक के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करता है
1: जी।
2: और उसके लिए जो नियम है वो बहुत बहुत सख्त है, या तो एक ससेक्शन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जो न्यायालय से मिलता है और उसमें बहुत समय लगता है
1: जी।
2: या बैंकिंग प्रणाली में एक और है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल ईयर्स, उनके जो भी वारिसों का एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसको बनाना पड़ता है
1: जी।
2: तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच ऑन टाइम इज बेटर। तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, वैध नॉमिनेशन रखें, वैलिड नॉमिनेशन रखें और नॉमिनी की अगर मृत्यु हो जाती है तो तुरंत नया नॉमिनी निर्धारित कर दें, तो ये भुगतान देने में दोनों संस्थाओं को भी आसानी होगी और जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ भी समय अनुसार मिल पाएगा, क्योंकि मृत्यु दावा का भुगतान समय अनुसार होना बहुत आवश्यक है
1: जी। और जो नॉमिनी है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, वो नाबालिग भी हो सकती है।
2: अगर नाबालिग है, मान लीजिए किसी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वालिग नॉमिनी नहीं है, तो उसके लिए एक अपॉइंटी को नियुक्त किया जाता है
1: जी,
2: जो उसके साथ मिलके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है
1: जी। अभी कुछ समय पहले आपने डेटा बताया कि पूरे देश में इसका लाभ उठा रहे हैं लोग, बेहद जागरूक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर बीमा योजना में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ह्यूबर्ट सर आपसे जानना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट का किस तरह का एक्सपीरियंस है? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग?
3: थैंक यू मैडम फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सी इंडियाज़ विजन बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन डिपेंड्स ऑन एम्पावरिंग एवरी सिटीजन
1: जी,
3: इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावरमेंट। अ डेवलप्ड नेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच एंड एवरी सिटीजन इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली एम्पावर्ड। वी एज अ बैंकर as an insurance company, as a post office, we are working on it so that each and every nook and corner of India, the financial accessibility is there.
1: Ji.
3: We are working on it so that each and every individual, whether you are in the rural area, extreme corner of in the northeast, extreme corner in the southwest, that financial accessibility should be there. We are working on it. That is one of the prime goal of our this one. That is financial inclusion. We want each and every individual citizen of India should be financially inclusion, financially strong, economically strong, so that India becomes a developed nation.
1: Ji.
3: Specifically in northeast, yes, there are difficult terrain, there are difficult road condition, where financial accessibility is very difficult, where we cannot reach to the villages, which is far away where there is no proper accessibility. But still then, we try our best as a financial sector, as an insurance company, post office. We ensure that the financial services, banking services, insurance services is reached to the corner by way of opening customer service points, by way of giving these mitras from time to time. Post offices, postmen are reaching there. So not only in Northeast, in other parts, there are also difficult centers. But still then, we are doing our best so that India, everyone is economically strong. Everyone is, the financial services is reached to each and every citizen of India. This is like as a banker, as a financial services, we are working on it.
1: Jee. Thank you so much for sharing it. और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था वो भारत का पहला गांव है माणा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम जन सेवा जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, यही ध्येय है। तो ये जो योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका लाभ इसी प्रकार से मिलता रहे सभी को। हम आम तौर पर जब दुर्घटना की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हम बीमा ले रहे हैं यानी हम किसी परिजन की मृत्यु की कामना कर रहे हैं, लेकिन ये भावना नहीं है। ये योजनाएं जो हैं हमें ये बताती हैं कि जब बहुत कठिन समय है, जब चाहकर भी हमारे अपने परिजन कुछ नहीं कर पाते हैं किसी दुख की घड़ी में, जब दुर्घटना के समय शारीरिक दुख वो साझा नहीं कर सकते किसी का, और अचानक जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसे टाला नहीं जा सकता, उस समय के लिए मानसिक रूप से हम खुद को तैयार करें, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सक्षम बनाए रखने के लिए ये योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे बैंक और हमारा बीमा क्षेत्र इस तरह से काम कर रहा है कि देश के कोने कोने तक इनका लाभ पहुंचे, और यही उद्देश्य आकाशवाणी का हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बारे में जागरूकता फैले और लोगों को पता चले कि वो स्वयं भी इसका लाभ ले सकते हैं, और हमारे जो हाउस हेल्प हैं, हमसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम समझाएं कि किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना ने भी हमें सिखाया है कि कब एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी हो सकती है और कब बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मिलकर हमें वो संबल नहीं दे पाती जो कोई एक व्यक्ति एक सही समय पर आकर हमें देता है। तो यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको इन योजनाओं के बारे में और बीमा क्षेत्र के बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिला होगा। मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले तो अपने विशेषज्ञों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगी। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ रहे हमारे साथ श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक से हमारे साथ थे। श्री कुलभूषण शर्मा, आप जीवन बीमा निगम क्षेत्र से रीजनल मैनेजर आप हैं। श्री ह्यूबर्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और श्री अशोक कुमार आप सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। श्री अशोक चंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी आवश्यक बातें हमें बताई, हमें जरूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्री कुलभूषण शर्मा जी, आपने जीवन बीमा निगम के बारे में भी बताया, लेकिन आपने ये भी बताया कि कैसे परस्पर भरोसा जो है वो रखा जाना चाहिए इस पूरी प्रणाली में, और छोटी छोटी चीजें जो हम बीमा योजना लेते समय पूरा करें, उस कागज को कैसे हमें भरना है, वो कैसे हमारे लिए जरूरी है, ये आपने हमें समझाया, जैसे नॉमिनी के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
1: अशोक कुमार जी, आपने बहुत अच्छे से सारा डेटा हमारे सामने रखा और हमें बताया कि किस प्रकार से इनका लाभ लिया जा सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे इनरोल करना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ह्यूबर्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए।
3: धन्यवाद।
1: मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आपसे अनुमति लेती हूँ आज का हमारा कार्यक्रम दुर्घटना बीमा छोटा कदम बड़ा बदलाव, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ और कार्यक्रम संयोग

0: नाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है।

0: के तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
1: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एएमटीएस और बीआरटीएस के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद बीआरटीएस देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।

0: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: इन मुद्दे प्रदेश समाचार। ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ವಿದ್ಯಾಭಟ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ನಿಧನ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಯಶಸ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರದ್ದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯ

0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता उत्पीड़न धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां चीन और

0: चीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन

टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफिनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जो उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मलडोर ख्याल टुमरी हिंदी भजन मराठी अभंग कन्नड़ दास साहित्य कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर। Awarded the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Sangeet Natak Academy, Kumar Mardur stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior Gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other Gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Satlingappa Desai Kallur aur harmonium par श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhaya Nat, Vilambit Jhumra, Inayat Ho, Drut Teen Taal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर